0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ईरान दुरुस्त फैसलो न कयो त असां पंहिंजो कम मुकमल कंदासीं. अमरीकी सदर ट्रम्प जे नई धमकी. चीन रवानगी खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर ट्रम्प चयो त ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे, चाहियूं था त सुठो मुआदो थी वञे. मुंहिंजे ख़्याल में ईरान जंग में चीनी सदर जी मदद जी ज़रूरत न पवंदी. असां वेनेज़ुएला सां सियासी कैदियुनि खे आज़ाद कराईंदासीं. चीन जे दौरे जा मस्बत नतीजा साम्हूं ईंदा. ट्रम्प चयो त पाकिस्तान जूं टाकरे जूं कोशिशूं बहितरीन आहिनि. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर शानदार शख़्सियतूं आहिनि. हुन खां अॻु जारी कयल बयान में ट्रम्प चयो त यकीन आहे ईरान यूरेनियम जो रचाव 100% रोके एटमी हथियार हासिल करण वारनि कोशिशुनि तां हथ खणी वेंदो. ईरान सां मुआदे लाइ तेज़ीअ सां एटमी दज़्ब अमरीका हासिल करे वठंदो. ईरान खबरदार कयो आहे हथियारबंद फ़ौज कंहिं बि सूरतहाल लाइ तयार आहे. दुश्मनी जरूरत कंदड़नि खे सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी. ईरानी परडे॒ही वज़ीर वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बाकाई एक्स ते जारी कयल बयान में चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल पारां ईरान ख़िलाफ़ जंग हिकु अहिड़ी जंग आहे जेका मुस्तक़बिल लाइ सुठी ऐं बुराई जी मफ़हूम जो तइन कंदी. जंग में हिकु पासे पेशेवर कूड़ा आहिनि ऐं जेके ज़ुल्म लाइ जवाबु पेश कनि था. ॿिए पासे हिकु बावकार क़ौम आहे जेका पंहिंजे वतन इंसानी वक़ार जो दिफ़ा करे थी ऐं सिर्फ़ पंहिंजी ताक़त ऐं अज़म सां भरोसो करे थी.

कराची जेको केन कोइन अनमोल उर्फ पिंकी जे तलत में शहाणे अंदाज में पिंकी के बिना हथकड़नि जे प्रोटोकॉल जे तलत आणींदड़ एस एच ओ समेत टे एहलकार मुअतल, एस एच ओ गार्डन हनीफ सियाल, एस एच ओ ज़फर इक़बाल ऐं आई ओ सईद खे मुअतल करे वाक़े जी जांच एस एस पी ॾखण माज़ूर अली हवाले कई वई आहे। गुज़िरियल ॾींहुं सुबुह पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत आणींदड़ पिंकी रेप जी वाक कंदे

0: सिंध असेंबली में अपोजिशन एमपीएस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी चटाभेटी इम्तिहान 2024 नतीजन शिफाफ जांच कराने जो मुतालबो कर छो हुकूमती धुर के वजीर एमपीएस बचाओ तो रुगो इल्जाम से न हलन घुर्जे कें वट कुसाबतियों सामू आने इदारा मौजूद आन वो वजीर पर मामले के ऐसी रहा है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: ही माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण
1: बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
0: Sindh ki ho to awaaz bhi sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत.
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی

0: ओर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ट्रेन के मंत्रकल करण जी मंजूरी देनी हुई स्टेट बैंक मौजूद 12 मई 2026 ते IMF तरफा मजमूई तौर ते 914 मिलियन SDR मिली आहे ही रकम 15 मई 2026 ते खत्म थियण हफ़्ते दौरान नाणे तकीरनि में शामिल थींदी

हुकूमत आईएमएफ के जनवरी 2027 ईस्वी ताईं गैस वापीदारनि खे मिलंदड़ 140 अरब रुपियनि जे किरास सब्सिडी ख़त्म करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। गैस ऐं बिजली ते मिलंदड़ रियायतूं वापीदार जो इस्तेमाल बदिरां आमदनी जे बुनियाद ते ॾिनियूं वेंदियूं। आमदनी बुनियाद ते रियायतुनि लाइ BISP डेटा इस्तेमाल थींदी। पेट्रोलियम डिवीज़न अख़्तियारनि मूजिब मौजूद निज़ाम में महफ़ूज़ ऐं गैर महफ़ूज़ वापीदारनि खे घटि अघ ते गैस फराहम कई वञे थी। रियाद जो बार सनअतनि कमर्शियल वापीदारनि CNG स्टेशन समेत सिमरट सेक्टर ऐं वधीक गैस इस्तेमाल कंदड़ घरेलू वापीदारनि बर्दाश्त कनि था। ईरान जंग में अमरीका जा 39 जहाज तबाह थिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेस मेंबर एडवर्ड गेस केस तस्लीम करे वरितो। सेनेट कमेटी में पेंटागोन जो CFO जे होस्ट हर्स्ट जंग में अमरीकी नुकसान ते सवालनि ते लवाईंदो रहियो। अमरीकी वेबसाइट रिपोर्ट मूजिब तबाह थियल जहाज़नि जो असल अंग वधीक थी सघे थो। कराची जी कुकीन क्वीन अनमोल और पिंकी की अदालत में शहानी पेशी। पिंकी के बिना हथ खड़न की प्रोटोकॉल से अदालत आनीदड़ SHO समेत टे एहलकार मुअतल। SHO गार्डन हनीफ सियाल ए SAO जफर इकबाल AO सईद के मुअतल कर वाके की जांच SSP दखण माजूर अली हवाले कई वही। गुजरियल ढी सुबह पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत आंदल पिंकी रैम्प जहां वाक कंदी ए अदालत कमरे में पहुंती हुई। अनमोल उर्फ पिंकी जो गिरफ्तारी खां पुलिस क्रिमिनल चैलेंज वारी ऑडियो भी सामू अची वही। पिंकी ऑडियो में चवे थी तो केस पकड़ने की कोशिश कर रिटायर थी वन था पर पकड़े न था सकन। बिरान थे पिंकी जी सोचो पवो।

सिंध असेंबली में अपोजिशन एमपीए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तिहान 2024 के नतीजन की शफाफ जांच करण जो मुतालबो कर छो। हुकूमती दौर के वजीरन एमपीएस बचाओ तो रुगो इल्जाम न हलन घुर्जे कें वट साबितियों आन तो सामू आने इदारा मौजूद आन वो वजीर पर मामले के ढी रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ताजन नतीजन खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव जमा। साल 2024 के जारी कल चटाभेटी इम्तिहान का नतीजा मुअतल करण जो मुतालबो। इम्तिहानी अमल मार्किंग ए मेरिट लिस्ट की शफाफ जांच लाए पंजाब के फॉरेंसिक लैब का जांच कराने की घुर। करप्शन ए मेरिट रिटार्ड साबित होने पर कार्रवाई का मुतालबो। ठहराव एमक्यूएम के एमपीए मोहम्मद महाज महबूब पारा असेंबली के सेक्रेटरी वट जमा कराया वो।

0: न्यूज़
1: आप सुन रहे हैं
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
6: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ

0: FM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6
0: जी हा 3135525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड,
1: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
0: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
1: मिलेगी लॉट्स ऑफ मस्ती
0: ओनली ऑन जी एफ एम 88 नेटवर्क।

यार है। चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। यू आर शोइंग इनटू टी रेडियो एफएम ETH और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। हैव यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल चिपचिपा कूल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है और मेरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपको और मेरा साथ रहता है। ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में हम वक्त की बात करें तो 11:16 जो कि पाकिस्तान का मेयारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस ले खुदा खैरियत मौजूदा, दवा गले खुदा खैरियत मतलब।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं सारी बातें करोगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना। इस गाने के साथ ही आपको बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सॉन्ग के साथ साथ आप लोग प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से। आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि है FM88GA सखर के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है लाइव एग्जैक्टली जो कि रिसेंट पोस्ट की गई है, ये पोस्ट मिलती है। उस पोस्ट के नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ इसको शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर जितना हो सकेगा उतना। इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488।

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, सॉन्ग के साथ साथ हम चलेंगे आगे और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। एक और गाना प्ले करेंगे, इस गाने के साथ चलेंगे आगे। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
5: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: एलोवेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: फिर जस मैंने नहीं पहनी चूड़िया तूने या काम कर दिया तूने कर बदनाम कर दिया मैंने भी तो चोरी चोरी चोरी चोरी मैंने भी तो अखिया मिलाई रे मुझे चोरी चोरी
1: ओके ये किसका गाना है और टाइटल क्या है इसका?
0: मेरे ख्याल से गाने का टाइटल है चोरी चोरी चोरी कर अखियां मिलाई
1: चोरी चोरी अखियां मिलाई और किसका गाना है ये?
0: पता नहीं मैंने तो पता नहीं किसका मैंने सुना
1: पाकिस्तानी है
0: मेरे ख्याल से पाकिस्तानी है।
1: ओके मैं देखती हूँ उसको सर्च करती हूँ अगर मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूँ और कुछ
0: बस नहीं
1: ओके अल्लाह हाफिज़ 03000 1134 88

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा, जो सागर भाई ने हमें गाना सुनाया ना, सागर भाई का गाना मुझे मिल नहीं रहा है, सो इसलिए ये वाला गाना प्ले

साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट और मैसेजेस भी कर सकते हैं, जो कि आप कर भी रहे हैं. और अभी भाई ने जो बात कही कि उन्होंने फिर मुझसे जवाब भी मांगा, सो अच्छा लगता है कि जब आप सजेशंस दें और सजेशंस भी काम के हों. लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो ये बोलती है ना कि ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है, ये ना बोला करें. क्यों, इसमें क्या बुराई है? वजह, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टाइल चेंज कर ले. अगर मैं आए दिन स्टाइल चेंज करती रहूंगी तो मेरी पहचान जो एक मेरे स्टाइल से है वो कैसे रहेगी? मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो ये चीज है. और फिर ये सारी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है. अच्छा है तभी तो आप सुन रहे हैं. एग्जैक्टली, अच्छा है. इतने सालों से ऑन एयर है भाई मेरे, अगर ऐसे ही फ्लॉप जा रहा होता तो इसको हम कब का बंद कर चुके होते. यू नो, एक चीज चल रही है, पसंद की जा रही है, ऑन एयर जा रही है, तो इट मींस कि वो चल रही है इसी वजह से.

0: FM 88
1: सखर की आवाज।
0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-450192। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: किसानों के

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ख्याल से ये गाना हमने प्ले किया था पहले, आपकी ही रिक्वेस्ट पे प्ले किया था. तो जब भी आप गाना सुनाया करें ना, तो गाना जो है ना डिफरेंट होना चाहिए आपका पहले वाले से. तो ये चीज आप कर लिया करें. ओके, नेक्स्ट कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: पहचानो आप, खुद पहचानो, मैं नहीं बताऊंगा आपको.
0: SRH? SRH बात कर रहे हैं? SRH
1: नहीं, हाफिज लखमीर. मोरो,
0: अरे हाफिज लखमीर भाई, कैसे? ठीक ठाक
1: अलहमदुल्ला, सुनाए? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है.
0: जी जी बिल्कुल सेट है. मुझे बताइएगा गाना सुनाएंगे.
1: मैं मुहर्रम का महीना आने वाला है, बार में एक मैं सुनाऊंगा प्यार.
0: ओके सुना दें प्लीज.
1: मैं सुनाऊं आपको?
0: जी जी सुना दें, सुना दें.

0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपने कहा मुहर्रम आने वाला है, लेकिन अभी तो ईद भी नहीं आई, ईद आएगी उसके बाद मुहर्रम आएगा ना?
1: तो बस कौन से दिन है, बस अभी थोड़े थोड़े दिन तो है, बस
0: थोड़े से दिन है ना, वही तो कह रही हूँ ना, अभी काफी दिन बाकी हैं।
1: तो आप देखो ना, आप बात ये है कि मुहर्रम पहले पहले भी हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन अल्लाह को याद किया जाए,
0: नो डाउट उसमें तो कोई शक ही नहीं है।
1: सिर्फ मुहर्रम याद किया जाए, उसके बाद याद नहीं किया जाए,
0: बिल्कुल हर वक्त थैंक यू सो मच
1: दोस्त मोहम्मद और मोहम्मद ताहिर नून साहब और आसिफ सावल और जो जवान मोहम्मद साहब और मामा खालिद जुड़े जो सुना।
0: ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हम गाना प्ले करेंगे, मेरा बैकग्राउंड ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है और गाना मेरे पास बहुत खूबसूरत मौजूद है जी। और साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी शेयर करूंगी, आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो भी शेयर करूंगी। और इसके अलावा

बोझ मुझे नजर नहीं आ रही, क्यों? बोझ को चेक करेंगे साथ साथ 888-1 पे आप लोग मुझे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं।

0: कमेंट पढ़ रही हूँ, लगता है जल्दी आ गया, कोई भी नहीं आया अभी। ओके, आज का टंग ट्विस्टर भी साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगी और साथ में गाना भी प्ले करेंगे। अच्छा, भाई ने अभी आके जो कहा कि नाच सुना दें, तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, आप अच्छे खासे मेरे ख्याल से समझदार हैं कि जब कोई म्यूजिकल चीज चल रही हो, अगर उस बीच में आके आप नाच सुना देंगे तो इससे आप बहुत अच्छे नहीं बन जाएंगे, इससे ये होगा कि आप गुनाहगार होंगे। ठीक है, और जब आपको पता है कि एक म्यूजिकल थीम है, एक म्यूजिकल चीज है, वहां पे आप अच्छा बनने के लिए जो है नाच सुना दें या फिर नाच की रिक्वेस्ट करें, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एक थीम को लेकर जो चीज चल रही होती है उसको आप फॉलो किया करें। अगर आपको वैसे ही कोई मनकबद या नाच सुननी है तो बिल्कुल आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन म्यूजिकल चीज के बीच में आके इस तरीके से जो है नाच सुनाना, ये आपको खुद भी सोचना चाहिए।
1: फिर
0: और भाई ने कहा कि मुहर्रम आने वाले,
1: जब होया
0: मेरे ख्याल से फिर 12 महीने आपसे फिर नाते ही सुना करेंगे। ठीक है, डन है, पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे हम। ठीक है जी, तो ये चीज है,
1: जे तू लभदा वफा फिर दानी लभनी रूप।
0: किस किस को समझाऊं मैं,
1: सजनी जदों अपना
0: हाय
1: होया थकते आनी।
0: आदिल हुसैन कहते हैं कि मोहब्बत सीख कर जुदा हो गया, नहीं सॉरी, मोहब्बत सिखा कर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया, अब किसको हम अपना कहें, जो अपना था वही बेवफा हो गया।

ये आपके लिए आदिल हुसैन। अच्छा, आज का टंग ट्विस्टर है, परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी। परवीन ने पर्पल पर्दे पर परिंदों वाली पेंटिंग पिन कर दी, ठीक है, ये कहना है। माँ किशोर, बाकी सब भी आ गए, कॉल के लिए दुआ कर रहे हैं, कॉल के लिए दुआ करें। कोई बात नहीं, आप अगले सेगमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं, नो इश्यू। आज छूटे छूटे लग जाएगी नहीं लगेगी, अल्लाह मालिक है। गाना सुनते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक प्लस न्यूज ब्रेक, दोनों के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड।

पाकिस्तान के IMF का इकदाई 3 अरब डॉलर जी खरी किस्त मिली वही स्टेट बैंक पारा तस्दीक स्टेट बैंक पधराई में चयो है तो IMF का AFO RSF प्रोग्राम तहत स्टेट बैंक जी अकाउंट में इकदाई 3 अरब डॉलर मिलिया IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 8 मई से 3 किस्त मुंतकिल करण की मंजूरी डिनी हुई स्टेट बैंक मौजूद 12 मई 2026 से IMF तरफा मजमू तौर से 914 मिलियन STUR मिलिया हुकूमत IMF के जनवरी 2027 का गैस वापेदारन के मिलिंदड़ 140 अरब रुपये की किरा सब्सिडी खत्म करण की खातरी कराए छी गैस ए बिजली के मिलिंदड़ रियायतू वापेदारन के इस्तेमाल बदर आमदनी के बुनियाद डिनी वेंदियों आमदनी बुनियाद से रियायतन लाए बेस्प डेटा इस्तेमाल थी पेट्रोलियम डिवीजन अख्तियार मूजिब मौजूदा निजाम में महफूज ए गैर महफूज वापेदारन के घट अघ से गैस फराहम कई वे थी कराची पुलिस के मंदचार्ज फ्रोज शर्मोल पिंकी जो 3 दिन जो जिस्मानी रिमांड मिली वो अदालत तरफा पिंकी जो रिमांड मिलने खिलाफ पुलिस आला अदालत से राबतो किया हो DIG दखण कराची चवाया पिंकी मथा बासी में दाखिल केस जो तफसील भी गर्द करे वरता गुजरियल ढी मातहत अदालत पुलिस के रिमांड बारे दरख्वास्त रद्द कंदे पिंकी के जेल मोकलो हो पुलिस पिंकी के बिना हथकड़न की पुलिस अदालत में पेश किया हुआ

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002976

0: 9662435. Address Tando Ghulam Ali Road, Mathli.
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हा, 3135525786।
1: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी, आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अभी होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो जनाब क्या करेंगे ये जरा बताते। लेकिन उसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या होने वाला है उसकी जाने पहले आ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछूंगी, ठीक है, एक सवाल पूछूंगी, ज्यादा नहीं पूछूंगी। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो जरा मैंने ये सोचकर सवाल आप लोगों से पूछना चाहा है कि भाई आजकल देखा जाए ना, जिस तरह गर्मियां बढ़ती जा रही है तो वैसे ही लोग ना शादियां कर रहे हैं। शादियां इतनी ज्यादा होती जा रही है लोगों के घरों में कि भाई मैं ये सोच रही होती हूँ कि आखिर गर्मियों में शादियां कराने का रीजन पता नहीं लोगों का जो है ना वो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों शादियां करा रहे होते हैं इतनी गर्मियों में। तो मुझे आज आपने ना ये बताना है कि ऐसी गर्मी में शादी अटेंड करना या फिर शादी का इनविटेशन मिलना, ये आप लोगों के रिश्तेदारों की तरफ से आप लोगों को पनिशमेंट होती है या फिर उनकी तरफ से आप लोगों के लिए प्यार होता है कि इस तरह की गर्मियों में अगर वो शादी कर रहे हैं और आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो ये क्या आप लोगों के लिए पनिशमेंट होगी या फिर आप लोगों के लिए प्यार होगा, बताइए जरा। दोनों सूरतों में जो है ना वो फंसते तो आप ही लोग हैं। तो बिल्कुल जी, इस गर्मियों में अगर लोग शादियां कर रहे हैं और साथ साथ अगर आप ये चाह रहे हैं कि शादियां जब है तो जाहिर सी बात है हम जो है ना वो तैयार तो होकर ही जाते हैं, मेकअप शेकअप तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन गर्मियों का हाल देखकर फिर हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं, मेकअप का तो जो है ना वो हमसे मत बोलिए। तो आप ऐसा करेंगे मेकअप को जो है ना वो जरा साइड पर रखिए, आप व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं। जब आप व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वियो।
2: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नस्लन ताई हलंदिया है। ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

तो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हाँ जी जनाब, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़काना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। हाँ तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं ना जो कि हमें पहली मरतबा सुन रहे होते हैं, तो उन लोगों को मतलब तफसील से बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं अगर ये बोलूं कि भाई आपको मैं पहले से बता चुकी हूँ ये वाली चीजें वो वाली चीजें, तो रोजाना हर एक चीज के बारे में बताना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि वो लोग जो कि जाना चाहते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं आती बातें, जो लोग थोड़ा आराम से समझने वाले लोग होते हैं, तो उन सब लोगों को ये बातें समझ आ जाएगी। अगर रोजाना बताऊंगी तभी तो आपके जहन में बात आएगी ना। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों ने कौन से प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने, जरा उसकी जानिब आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होने चाहिए ये तमाम प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आपके पास नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सके और कॉन्टेक्ट करके उन्हें बता सके कि आप कहाँ से प्रोग्राम सुनते हैं और कहाँ पर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं। तो नंबर डायल कीजिएगा 03 1579 0595। ये नंबर आपकी आसानी के लिए है ताकि आप कांटेक्ट कर सके, उन्हें बता सके कि आपके एरिया में नहीं अवेलेबल ये तमाम प्रोडक्ट्स, तो जरूर से डायल कीजिएगा 03 1579 0595। ये नंबर डायल कीजिए, कॉल करें या फिर मैसेज करें, उन्हें बताएं कि आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, तो यहाँ पर मैं जरा आज आप लोगों को बताऊंगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हम जानेंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों की स्किन के ऊपर किस तरह काम करती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, सबसे पहली बात के जनाब ये जो है ना वाइटामिन ई बीट से तैयार शुदा होने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में आप लोगों को जो है ना, मतलब बहुत से थोड़े से प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर जो है ना वाइटामिन ई बीट्स शामिल किए गए हैं, तो उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल होती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इसकी प्रीमियम क्वालिटी है और ये आपकी स्किन को इतना खूबसूरत बना देती है। जैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके जिल्द की खूबसूरती के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी स्किन की हिफाजत के लिए भी जरूरी है और आपकी स्किन की हिफाजत करने के लिए जो है ना इसे तैयार किया गया है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना इस तरह की चीजें ऐड की गई है जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा और आपके चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा रखने में मदद करता है। और इसका बाकायदा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिल्द की जो बेरोनगी है ना वो कम हो जाती है और आपका चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खुसूसी अज्जा जिल्द को फ्रेश एहसास देते हैं और आपकी खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं। तो रोजाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप लोगों की खूबसूरती में निखार आ जाता है और आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ तैयार शुदा है जनाब, जो कि अगर आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे ना लगातार, दो रातें इस्तेमाल करने से आप लोगों की खूबसूरती जो ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप लोगों को एहसास होगा कि वाकई आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें दम तो है। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो भी जरूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो उसके साथ आपके पास जो है ना एक फेस वॉश भी होना चाहिए और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब ये बहुत ही मस्त तरीके से तैयार शुदा है और इतना जबरदस्त है, जब आप इसे देखते हैं तो आप कहते हैं भाई क्वालिटी तो बड़ी अच्छी लग रही है और अगर आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को प्रोडक्ट भी बहुत मजा देता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप डी स्किन का फेस वॉश भी लगाइए। डी स्किन का ब्यूटी फेस वॉश है जो कि आपको इजीली कहीं से भी मिल सकता है, आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स उनको रिमूव करता है, आपके चेहरे की स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपके चेहरे की स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपके चेहरे को जो है ना वो बहुत ज्यादा कुल मिलाकर खूबसूरत बना देता है। तो बिल्कुल सी ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी लगाते रहिए।
اوکے جناب، یہ تمام تر پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اتنے سارے پہلے پروڈکٹس لگا لیے ہیں، لیکن اصل جو پروڈکٹس ہیں نا وہ اس طرح کے ہونے چاہیے جو آپ کے چہرے کی طرح سے تیار شدہ ہو، یعنی کہ اگر آپ کی اسکن کسی بھی ٹون کی ہو تو اس طرح کے پروڈکٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس. تو ڈی اسکن پیوری کریم ہے یا پھر ڈی اسکن کا فیس واش ہے، یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے اویلیبل ہے. تو آل اسکن ٹائپ کے لوگ انہیں استعمال کریں گے، اور لڑکے لڑکیاں سبھی لگا سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک نائٹ کریم ہے، اسے آپ رات کے ٹائم استعمال کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا استعمال کرنے سے پہلے فیس واش لازمی کیجیے گا. یہ تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں، اہم باتیں ہوتی ہیں جنہیں آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ اگنور کریں گے تو بھائی آپ لوگوں کو خوبصورتی نہیں ملے گی. تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر دھیان دیا کریں، ان چیزوں کو فالو کیا کریں، تبھی آپ لوگوں کو پرفیکٹ والے نکھار مل سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے استعمال سے آپ کو دو راتوں کے استعمال سے جو نا آپ کو خوبصورت سا نکھار مل جاتا ہے، دو راتوں کے استعمال سے آپ کو گارنٹی کے ساتھ ساتھ ریزلٹس مل رہے ہیں. تو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے، خوبصورتی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ہاں جی، آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں، بالکل آپ کے فیڈ بیکس ہمیں ملتے جا رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن کرتے جائیے اور اپنی پیاری پیاری فیڈ بیکس ہمیں سینڈ کرتے جائیے، اور ساتھ ساتھ آپ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی مجھے بتاتے جائیے، اور فیس بک والے لوگ پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے جائیے. اوکے سو میں نے آج جو ہے نا آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی گرمی میں شادی اٹینڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے پنشمنٹ ہے یا پھر آپ لوگوں کے ریلیٹیوز کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے پیار. کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اڑی موسم میں مانو اگر شادیوں کرائیں تھا تنہ جو ریزن چاہے یہ ریزن اسا کے ڈیڈی نہیں خبر نائیں پے لگے تو اگے تے بھی خبر نہ پندو. تو تا مکے بدھایو تے یا اسا مانن چلا پنشمنٹ ہوندی یا وری انن مانن جو پیار ہوندا کہ اسا کیڑی گرمی میں شادی انوائٹ کرنا ہے. اوکے جی، سو بالکل تما ان ٹاپک کے فالو کر سکو تھا، ائی تما 8881 تے ائی فیس بک تے اسا کے جوائن کر سکو تھا. تو جے کہ فیس بک والا مانو ان پوسٹ کے زیادہ کھا زیادہ تما شیئر کرنا ہلو، اور نمبر ڈائل کرنا جناب 03157990595. نمبر ڈائل کرو پانے قریبی جنرل سٹورز سے، تمام پروڈکٹس اویلیبل کرایو جی تمام وٹ بھی ایزیلی ملی ونے. یہ سارا پروڈکٹ جے کہ ماں پروگرام میں بدھایا پر. تو وائٹش اینٹی اسکن بیوٹی شو ہے، وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹ کے تمام تک پہنچائے ونے پر تمام سگڑ ماں سگڑ پوری پوری.

तव्हांजी तव्हांजी हुकुम जी ताबेदार। ओके सो ये हमारे साथ मौजूद है जनाब यासीन गुटाड़ो भाई सेक्रेंट सिके ते अलहमदुलिल्लाह अवां बुझायो खुश आयो जबरदस्त प्रोग्राम आई तवां जो मोहब्बतूं प्यारे भाजू आई मां भी सफा ठीक आया मजे में आया तवां जी दुआ सा। उस्ताद सिकंदर माशी हमारे साथ हैं मोरो से के ते आप ही सॉन्ग जलाल चांडियो का सुनाइएगा। गरीबा बासी आप हमारे साथ मौजूद है वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। और चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद है वेलकम जी। गोट नबी दाद बमरू नारो खा इमाम डिनो बमरू हमारे साथ के अधिक खुश आयो प्लीज प्ले निगत नाज। निगत नाज अज जरूरी नहीं तवां सुकून सा वेरो पानी सीट ते। और ये मौजूद मीरपुर खास अब्दुल्ला महर के अस्सलाम वालेकुम बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है टॉपिक गर्मियों में बिस्तरों की जरूरत नहीं पड़ती सॉन्ग सुनाए फायज अली का। चले मतलब हाँ हर किसी के ऐसा है ना कि हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक ही शादियां कर रहा होता है तो गर्मियों का ये भी एक है कि गर्मियों में ना बिस्तरें भी नहीं नीड पड़ती ज्यादा और सर्दियों में तो हर किसी को बिस्तरा चाहिए होता है ये भी सही बात है। और इसके अलावा इरम कहती है कि सिर्फ जानी मेरी दूसरी ओके जी ओके ठीक है।

ये भाई साहब को ज्यादा हो गया। ओके जी, हमारे साथ ही मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वेंसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सुद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं। और कहती हैं कि टॉपिक प्यार है बाबा प्यार, सलाम टू माय स्वीट हार्ट मोम एंड ऑल स्वीट सिस्टर्स। ओके डियर सिस्टर, मेरी शादी तो सर्दी में हुई थी, बट हम अपने भाई को बोलते हैं कि गर्मी में शादी कर लो ताकि मेहमान गर्मी का मजा भी ले सके। डाडी सज्जना तू माइट रंजी। और कहती ओके सिस्टर, अच्छा ये हमारे साथ फजीला सिंधी मौजूद है, क्या बात है फजीला। और कहती है ये सवाल आपसे भी है कि स्वीटी आप किस मौसम में शादी करना चाहेंगी? भाई जाहिर सी बात है, सर्दियों में शादी करना जो है ना वो एक अच्छा साबित होता है, मतलब मानो सुकून ऐसा खाई पी सकन, मेकअप करी सकन, भला लटा पाए सकन। गर्मी में तो बाबा कुछ भी ना है वणंदो।

nossa, hein, mano? Obrigada, até aqui, ó. नाउ प्रोग्राम व्हाइट इश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट इश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. सो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा ये भी जरा मुझे बताइए. और ये हमारे साथ मौजूद हैं

अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हमारे लिए पनिशमेंट होगी गर्मियों में, योर टॉपिक आंसर ओके जी। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि हां जी सदरा, आज शादी थी हमारे रिश्तेदारों की शादी थी लेकिन घर वाले गए लेकिन मैं नहीं गया, इतनी गर्मी है तो मैं घर पर ही तनहा बैठा हूँ। यह ही हकीकत है, अगर गर्मियुनि में तव्हांखे शादी जो सॾु मिलंदो आहे न, पोइ माण्हू इहो सोचींदो आहे बाबा छॾे हाणे शादी में कहिड़ो, मानी त वैसे ई थोरी खाईंदासीं। सो घर भला आहियो ईअं न, मां त ईअं कंदी आहियां। अञा वरी घणा माण्हू जॾहिं जमा थी वेंदा आहिनि हिकड़ी जॻह ते त पोइ अञा वधीक गर्मी थी वेंदी आहे, भले गर्मी थोरी हुजे न पर पोइ बि जॾहिं इलाही सारा माण्हू जमा थींदा आहिनि पोइ सफ़ा घणी गर्मी महसूस थींदी आहे। सो भले तव्हां न वेंदा कयो जीअं थोरी गर्मी हुजे ऐं माण्हुनि खे जेको आहे न उबस महसूस न थिए, ऐं तव्हां जेको आहे न घर वेही सुकून सां पंहिंजो फेस वॉश कयो जनाब ऐं क्रीम लॻाए वेही रहो, वाइट एज जी या वरी डी स्किन जी जेका तव्हांखे सुठी लॻे, जेका तव्हां लॻाइण चाहियो था, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। मोहम्मद साले लगारी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद साले भाई, आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। और उसके अलावा हिदायतुल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। दर्द दिल आ चुकी है। स्वीटी, वालेकुम अस्सलाम, कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है जो मेरा दोस्त है वो सबसे बेहतरीन है। ओ या कही ना भली गाल। नूरिस एंटोनियो भाई भी लिखते हैं कि हाँ, बदीन में टॉपिक, अच्छा बदीन से आप हमें सुन रहे, कहते टॉपिक गर्मी में लोग खाना कम खाते हैं इसलिए एज अ पनिशमेंट हम कह सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। सनौला बिरोई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। बरकत रमदानी जमाली बलोच हमारे साथ मौजूद है बलोचिस्तान से, वेलकम जी। और फरहान अहमद खोखर हमारे साथ मौजूद है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और हेंची अहमद हालार, वेलकम। अच्छा मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। अच्छा सारे लोग जो है ना वो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी मेंशन कर दिया करें ताकि आपके दोस्त भी सुने और वो भी जाने कि वाइट एज ब्यूटी क्रीम या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फायदे जो है ना उनको भी मिलने चाहिए ताकि वो भी खूबसूरत हो जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मैं बता रही थी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती है। और आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आप अच्छे से जानते हैं ये विटामिन ई बीड्स मौजूद है जो कि आप लोगों की स्किन को जो ना अंदर तक जाकर आपकी स्किन को खूबसूरती देते हैं। और उसके साथ साथ माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन के साथ तैयारशुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है, बहुत ही जनाब प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है जी। स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना सुपर डुपर प्रोडक्ट है। और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को मजीद बढ़ा सकते हैं। तो इस्तेमाल करते रहिए और डायल करते रहिए 0315 95। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है, हेलो अदी जी, शिकारपुर आया हूँ शादी में, गर्मियों की शादी सजा है, मजबूरी वाली एंजॉय, क्या हालत है। यही बात है, मैं जहाँ देख रही हूँ वहाँ शादियाँ हो रही हैं, जब जैसे गर्मियां बढ़ती जा रही वैसे लोग शादियां कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आज मैं जरा आप लोगों से सवाल पूछ लूं। देखिए मुझे पता चलता जा रहा है कि भाई ये सिर्फ असा सा आजार ना, ये सबनी सा आजार है। तो बिल्कुल जी इंजॉय कयो गर्मियुनि जूं शादियूं, ऐं वरी तव्हां बि उन्हनि सां इहा सज़ा उन्हनि खे ॾिजो, तव्हां बि शादी जेको आहे न गर्मियुनि में कजो। तव्हां जा बि कुझु ख़र्च बची वेंदा। और यहां पर जो है टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाने लगे हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो. 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी मारी हुई है. अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा. तौबा तौबा, कोई हाल नहीं होती है.
4: पहिरीं ॾींहुं कोकीन क्वीन पिंकीअ खे शाही प्रोटोकॉल ॾिनल. कराची पुलिस जो ॿिए ॾींहुं फुर्तियूं. ममचाद रोशन मोदर पिंकीअ जो रिमांड हासिल करे वरितो. कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ॾखण जे अदालत में पिंकीअ खे जेल मोकिलण वारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जे फैसले खे चैलेंज कयो. अदालत दरख़्वास्त मंज़ूर कंदे कोकीन क्वीन पिंकीअ खे 3 ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो. डीआईजी ॾखण चयो आहे त पिंकीअ जो रिमांड मिली वियो आहे. पिंकीअ मथां माज़ी में दाख़िल केसनि जा तफ़सील बि घर करे वरिता आहिनि. गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस पिंकीअ खे बिना हथकड़नि जे अदालत में पेश कयो हो. कुकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकीअ जो वधीक हिकु आडियो साम्हूं अची वियो. गिरफ़्तारीअ बाद कयल आडियो में पिंकी जो ख़रीदारनि खे सिस्तो ज़ाहिरण जो पैगाम. पिंकीअ मंशात ख़रीदारनि खे राब्ते लाइ नंबर बि ॾेई छॾियो. आडियो में पिंकी मंशात वठंदड़नि खे गिरफ़्तारीअ बाबति आगाही ॾींदे चई रही आहे त जेकॾहिं मूंखे कुझु थिए थो त हिन ई नंबर तां मुंहिंजो दोस्त तव्हां सां राब्ते में ईंदो जेको हिन कम खे संभालींदो. हुन ई नंबर तां कमु हलंदो रहंदो. गुज़िरियल ॾींहुं लीक थियल आडियो में जवाबदार पिंकी चई रही हुई त तव्हां माण्हुनि जो अकुल गोॾनि में आहे. 8-9 साल मुंहिंजे पुठियां लॻा रहो था, रिटायर थी वञो था, पर पकड़े नथा सघो.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर. GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
6: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो? हाने वक्त आहे चमकण जो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो. पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो. है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज.
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
8: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत.
9: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
9: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
8: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
9: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
8: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमा बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
9: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
8: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मैनजन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
9: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
8: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकारी चौक बदीन रोड मातली

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सई

0: 147 बट्टी 41 200 टी। केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
0: जी हा, 3135525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हाँ जी, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरा पुरमातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सर एश एनडी स्किन ब्यूटी शो व्हाइट एश एनडी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, खुश आमदीद। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एनडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके, सो मैंने पहले जो है ना आप लोगों को जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ना, तो अभी जरा मैं आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद भी कहेंगे। सो अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो है जनाब ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और आप लोगों की स्किन को बड़ा स्किन को जो ना ब्यूटीफुल बनाने के लिए है। और अगर आप लड़के हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लड़के भी लगा सकते हैं, लड़कों के लिए भी है। और अगर गर्मियों का सीजन आ ही चुका है इतना ज्यादा जोरों शोरों से, तो ये वाली बात भी है कि जब गर्मियों का सीजन आता है तो आपके चेहरे पर एक्नी भी लाता है, ये बात बिल्कुल है। तो जिन लोगों के चेहरे पर एक्नी का प्रॉब्लम है ना, एक्नी का मसला है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और एक्नी को आप जितना कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता, तो अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी है और बहुत ज्यादा वाले एक्नी है तो आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर पिंपल नाम से जो है ना व्हाइट एश का ये एक्नी क्लियर ट्यूब आता है, डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप जाकर परचेज करेंगे तो आपको इजिली कहीं से भी मिल सकता है। अगर नहीं मिलता तो जो नंबर बताती है उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा। तो डॉक्टर पिंपल का जो ये ट्यूब है ना, एक्नी क्लियर वाला ट्यूब, ये आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर जितने भी निशान आते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। और पाकिस्तान में पहली मरतबा जो ना ऐसा कोई एक ट्यूब तैयार किया गया है जो आपके हर दानों को देखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि लोगों के जो दाने होते हैं ना वो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा अजीब से होते हैं, आप देख रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये एक्नी है या ये कुछ और चीज है, क्योंकि हम कई मरतबा समझ भी नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन जो है ना वो जिस तरह की स्किन होती ना, अगर उस तरह पर दाने निकल आते हैं तो ये आप समझ भी नहीं पाते हैं और आपको जो चीज यानी कि जेको डस्ट मानू डींदा है वो चीज तवा इस्तेमाल करण शुरू करना है। तो ये न कहो बाबा पांजी स्किन ते एहसान कयो, आई तवा जेको आ ना डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब इस्तेमाल कयो, एक्नी क्लियर ट्यूब आहे, एंटी एक्नी क्लियर ट्यूब आहे, आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार थियल आहे, तमाजे चेहरे जा एक्नी खत्म थी वेंदा, तमाजे चेहरे ते खूबसूरती अची वेंदी, आई तमाजे स्किन ते जेके एक्नी जा निशान हुंदा ना उहे भी खत्म थींदा, कट जो निशान आ, सड़न जो निशान आ, उहे सब निशान खत्म थी वेंदा, आई तमाजे स्किन क्लियर थी वेंदी, बिल्कुल जनाब क्लियर थी वेंदी। तो डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब तमा लाज़मी ट्राई करे, जो छोकरा छोकरियूं सब लगाईंदा, इस्तेमाल करण तरीको जेको आहे न बिल्कुल आसान आहे, तमा राति जे टाइम इस्तेमाल करे, जेको ईज़ी तरीको रहे थो, ॾींहं जो लॻाइण चाहियो त बिल्कुल लॻाए सघो था, पर राति जो लॻाए मुनासिब टाइम हूंदो आहे। राजो तव्हां ईअं लॻायो जो पंहिंजो फेस वॉश कयो, हथनि खे बि अछे तरीक़े सां साफ़ कयो, हुन खां पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल जो ही जेको ट्यूब आहे उहो पंहिंजे एक्नी जिते जिते एक्नी उते उते लॻायो, जिते निशान आहिनि उते उते लॻायो, जिते सड़न जो निशान आहे, कट जो निशान आहे, उते तव्हां लॻाए मुनासिब जॻह ते, पोइ तव्हां जेको आहे न सुकून सां सुम्ही पओ, सुबुह जो उथी तव्हांखे फेस वॉश करणो आहे, ऐं जॾहिं तव्हां टे चार रातियूं लॻातार लॻाईंदा पोइ तव्हांखे महसूस थींदो त तव्हांजा जेके एक्नी आहिनि या एक्नी मार्क्स आहिनि या जेके चीज़ूं आहिनि उहे घटिजंदियूं वञनि थियूं। बिल्कुल जी, सो तव्हां ट्राई करे जो, हुन सां गॾोगॾु व्हाइट एश जी जेका लवली क्रीम आहे हीअ बि तव्हां सभिनी जे लाइ आहे, ईअं सम्झो त बाबा ही गेम चेंजर आहे, अहिड़ो ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे जेको तव्हां ॾींहं जो राति जो लॻाए सघो था, अगरि तव्हां राति जो लॻाइणु चाहियो था त बिल्कुलु लॻाए सघो था, ॾींहं जो लॻाइणु चाहियो था त तव्हां बिल्कुलु लॻाए सघो था। तो व्हाइट एश जी जेका लवली क्रीम आहे तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसो, विटामिन सां भरपूर आहे जनाब, हिन में वाइटमिन B3 आहे, वाइटमिन C आहे, वाइटमिन E आहे, वाइटमिन D आहे, 3 जेके न वाइटमिन जा कैप्सूल हिन में एड थियल आहिनि, तो तव्हां सभु माण्हू हुन खे लॻाए सघो था, तव्हांजी जिल्द खे निखारींदी, दाग धबाइण हुननि जा निशान घटि कंदी, तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी, उहो कीअं, छो त व्हाइट एश लवली क्रीम जे अंदरि सनस्क्रीन बि मौजूदु आहे। सो अगरि तव्हां कोई बि नॉर्मल फेयरनेस क्रीम लॻाइण चाहियो था त व्हाइट एश जी लवली क्रीम तव्हांजे लाइ बिल्कुलु परफेक्ट सोल्यूशन आहे, हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो, पंहिंजे चेहरे खे खूबसूरत बनाए सघे थो ऐं पंहिंजी स्किन जी हिफ़ाज़त करे सघे थो। गर्मियुनि जे मौसम में बाबा हीअ त ॾाढी लाज़मी तव्हां सभिनी जे लाइ शइ आहे, अगरि तव्हां मेकअप नथा करणु चाहियो, मेकअप कयो था ऐं मेकअप टिके नथो फेस ते, त तव्हां व्हाइट एश जी लवली क्रीम इस्तेमालु कयो, ऐं व्हाइट एश जी लवली क्रीम इस्तेमाल करण सां तव्हांजी स्किन जेका आहे न ख़ूबसूरत थी वेंदी, तव्हांखे मेकअप जी बि ज़रूरत न पवंदी। अगरि तव्हां काॾे बि कोई कमु कयो था, वञो था डेली बेसिस ते, तव्हांजो कोई कमु आहे, तव्हां वेंदा आहियो, ॿाहिरि निकिरंदा आहियो, त हुन जे लाइ तव्हां व्हाइट एश जी लवली क्रीम लाज़मी यूज़ कयो, जीअं तव्हांजी स्किन जेका आहे न प्रोटेक्ट रहे ऐं तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न सनस्क्रीन जो इफ़ेक्ट बि मिली वेंदो। सो तव्हां लाज़मी ट्राए कजो, ऐं हुन सां गॾोगॾु व्हाइट एश जी ब्यूटी क्रीम बि मौजूदु आहे। व्हाइट एश जी ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन खे ब्यूटीफुल बणाईंदी, फेयरनेस क्रीम आहे, राजे टाइम
जल्दी तव्हां लॻाए सघो था. नाइट क्रीम आहे, उन सां गॾो गॾु जेका वाइट एज जी ब्यूटी क्रीम आहे न, उहा तव्हां लॻाईंदा. एवोकाडो ऐं एलोवेरा मौजूदु अथसि हिन जे अंदरि. इन सां गॾो गॾु तव्हांखे वाइट एज जो ब्यूटी सो बि मिले थो ऐं तव्हांखे वाइट एज जो फेस वॉश बि मिले थो, जेको वाइटमिन सी सां तयारु थियलु आहे. सो हाणे तव्हां सोप लॻाईंदा या तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा तव्हां ते डिपेंड करे थो. सो तव्हां लॻायो, ख़ूबसूरत थी वञो, सुहिणा सुहिणा थी वञो. बाबा हर कंहिंखे हक़ आहे ख़ूबसूरत थियण जो ऐं हर कंहिंखे बिल्कुलु इहे राइट्स आहिनि त हू पंहिंजी ख़ूबसूरती खे निखारे ऐं तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा रहो. अगरि तव्हां अवेलेबल कराइणु चाहियो था पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595. नंबर तव्हां लाज़मी डायल कयो जी. तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से बि ही सभु प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञे. उन खां अलावा मूं अॼु तव्हां खां सुवाल पुछो प्रोग्राम जे अंदरि, त जनाब तव्हां मूंखे ॿुधायो, अहिड़ी गर्मी में शादी अटेंड जेके माण्हू कंदा आहिनि या फिर जिन खे शादी जो सॾु मिलंदो आहे, इनवाइट कंदा आहिनि तव्हांखे तव्हांजा माइट, त मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हांजे लाइ पनिशमेंट हूंदी आहे या हू माण्हू तव्हां सां प्यार कंदा आहिनि? मतिलबु अहिड़ी गर्मी में शादियूं कंदा आहिनि बाबा, ऐं वरी तव्हांजो वञण बि लाज़मी हूंदो आहे कई मरतबा. मुंहिंजी अमी खे त बसि शादी जो सॾु मिले न, चवंदी आहे हा ज़रूरी वञिणो आहे, ज़रूरी. इहा सही ॻाल्हि आहे, शादियुनि में बसि तव्हांजे घर जा वॾा ई वेंदा आहिनि, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे. ऐं तव्हां भले वञो. ओके जी, सो शादी अगरि थिए पई तव्हांजे मिटनि माइटनि में बि, सो तव्हां मूंखे ॿुधायो न, गर्मियुनि में जेके माण्हू शादी कंदा आहिनि या शादियुनि जो तव्हांखे सॾु ॾींदा आहिनि, उहो तव्हांजे लाइ पनिशमेंट हूंदी आहे या फिर उहे तव्हां सां प्यार कंदा आहिनि तॾहिं हू अहिड़ी मौसम में शादियूं रखंदा आहिनि? मिटनि माइटनि जो सोचे करे त बाबा असां गर्मियुनि में शादी कराईंदासीं, सभु असांजा मिट माइट अचनि, मज़ो वठनि गर्मी जो. ओके, सो बिल्कुलु तव्हां चापे खे फॉलो कयो पिया, असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियो पिया. तव्हांजा मैसेजिस मां चाहियां पई त जल्दी ख़तमु कयां. कॉल जेके आहिनि तव्हांजो वठूं था, थोरो सबर कयो.

अच्छा इरम कहती हैं कि प्यार आ बाबा प्यार, अभी कुछ दिन पहले मेरी दोस्त की शादी थी, वहाँ मैंने जोरी एक प्लेट खाई थी, गर्मी भी कुछ ज्यादा थी ना। हाँ ये तो वैसे है, जोरी पर छो खा दो। और ये कहते हैं अदी जी हमारी डेट सर्दियों की निकली है नवंबर महीने की, मैं बाकी दूल्हे को डांटा मैंने बहुत है। और अदी जी ओके चलो एक कूल सा गाना सुनते हैं। हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा बोलिए, कूल वाला गाना सुनते हैं ताकि थोड़ा माहौल जो ना वो कूल कूल हो जाए। और बिल्कुल गाना आपका सेट कर दिया है, लाजमी चलेगा। और आप हमारे साथ जयपाल भाई मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और सिटी शहदादपुर से मीर अल्लाह डिनो खान टालपुर, आपका शो विनी विनी नाई से बहुत शुक्रिया। दादू खां इमदाद जतोई है, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई और किफायतुल्ला जतोई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद जमान कहते हैं आपका शो वीआईपी हमेशा की तरह, वेलकम टू शो स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू मोहम्मद जमान। यार परदेसी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मुलाजिम भाई हमें सुन रहे हैं। और जानी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है भाई, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। और निजाम भट्टी कादरी वालेकुम अस्सलाम, आप हमारा प्रोग्राम शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया जी। दर्द दिल कहती है कि टॉपिक चंदा गर्मी में लोग खाना थोड़ा खाते ना, और कहीं पर जाने का दिल भी नहीं करता लोगों का। अच्छा माना यह गाल थोड़ी समझ में ना आई। और निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम। और महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं, महर इरफान सियाल साहब आपको वेलकम करते हैं, और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, और वो खूबसूरत होते जा रहे हैं। बताते जाइए जनाब कहाँ कहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हुए हैं ये प्रोडक्ट्स, या फिर कहाँ कहाँ पर अभी तक रहते हैं। और ये दर्दी दिल कहती हैं कि सिद्रा तुम्हें पता है ये एंजल वाला सॉन्ग जब तुम लगाती हो ना तो मुझे लगता है कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, वैसे ये मुझे भी लगता है। गाने की वाइब भी कुछ ऐसी है कि ऐसा महसूस होता है, वाकई सही बात है। ओके सो गाना था जी, मैं जरा बातों में इतना गुम हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ सारी बातें। तो ये वाला गाना हम सुनेंगे, और गाना सुनते सुनते जो है ना आप लोगों के साथ बातें करेंगे, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

नहीं, गर्मी तो फुल कोशिश कर रही है हमारी जो शक्लें ना वो शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर से मिलाने की, लेकिन हमने भी ये ठान लिया है कि हम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके खूबसूरत ही रहने वाले हैं और व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाकर हम खूबसूरत ही रहने वाले हैं। तो आप भी लगाइए और हमेशा खूबसूरत ही रहिए। और उसके साथ साथ हैं जी हमारे साथ डियर गर्मी थोड़ी करें नरमी प्लीज। अतीजी आप कहो ना प्लीज। लकी दर पर एक घर में बैठा हूँ, बाहर देख रहा हूँ तो हमारे घर का ये समझ नहीं आया मुझे मैसेज आपका। जयपाल भाई क्या कहना चाहते हैं?

0: It's too.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 578 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी, सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
3: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा, गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: ओके जनाब, सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि इस तरह की गर्मियों के सीजन में लोग जो शादियां करते हैं और उन शादियों में आप लोगों को इन्वाइट करते हैं, तव्हां खे सॾु मिलंदो आहे शादी जो, त तव्हां मूंखे ॿुधायो इहे तव्हांजे लाइ पनिशमेंट हूंदी आहे या फिर उहे माइट जेके आहिनि तव्हांखे शादी जो सॾनि था, उहे तव्हां सां प्यार कंदा आहिनि, प्यार जो इज़हार हूंदो। अचो बाबा, अहिड़ी गर्मी जे मौसम में तव्हां बि मज़ा वठो। ओके, सो तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया 888-1 ते तव्हांजा मैसेजेस आहिनि, तव्हांजा कॉमेंट्स आहिनि, फेसबुक वारो पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो ऐं तव्हां जूं कॉल्स वठूं था। बिल्कुल जी, कॉल वठंदासीं, थोरियूं थोरियूं कॉलिंग वठंदासीं, जीअं थिए त अॼु सिधरा कॉलिंग वरितियूं हुयूं। ईअं न त माण्हू चवंदा अॼु प्रोग्राम में सिधरा कॉल न वरिता हुया। सिधरा कॉल वठंदी बाबा, वठंदी, दिलि जाए कयो। ऐं कॉल करणु चाहियो था त कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88। अगरि तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी प्राइस जा प्रोडक्ट पंहिंजे कहिड़ी बि जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था, त पोइ तव्हां डायल कंदा 0315-799-0595, इहो नंबर डायल कजो, ठीकु आहे। ऐं बाक़ी तव्हां कॉल कयो था त तव्हांजे लाइ नंबर आहे 0332-1322-88। सो फर्स्ट कॉल ॾिसूं था, फर्स्ट कॉलर के जैसे सगन मौजूद आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: हेलो,
5: वालेकुम अस्सलाम, केड़ा से सगन
6: आहियो?
5: ओके इमाम भाउ, खुश आहियो? अलहमदुलिल्लाह। जी जी जी जी, प्रोग्राम ॿुधो पिया?
6: हा, प्रोग्राम डेली जीअं ॿुधां वञी ॿुधंदा।
5: टॉपिक ते तव्हां छा चवंदा?
6: असां इहो चवंदासीं असां गर्मी में शादी न वेंदासीं।
5: न वेंदव, बसि छॾे ॾियो।
6: हा हा, सभु पतो को इनकार आहे।
5: अच्छा, घर वेही करे वाइटी जा प्रोडक्ट लॻाए सुकून कंदव, ईअं न? हा, गर्मी बाबा ॾाढी आहे, सो पंहिंजो ख़्यालु रखो, घर खां थोरो वाकई घटि निकिरो। ओके, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? ओके, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में शामिल थिया। मोहबतूं प्यारे भाजू, कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88। नेक्स्ट कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम,
5: केरस से सगड आप?
7: ज़ुहैब लाड़काने खां।
5: ज़ुहैब लाड़काने खां फोन कई आहे, ॿुधायो त तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया? अच्छा, टॉपिक ते तव्हां छा चवंदा? ॾिसो, कराइनि था न शादियूं, तव्हांजे माइटनि जूं बि थींदियूं हूंदियूं। उहा ई ॻाल्हि आहे न। चलो, मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट लॻाया आहिनि, बसि प्रोडक्ट लॻाए करे सुकून सां घर सुम्ही पओ, चओ छा जा माइट। चलो, ज़बरदस्त थी वियो, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
7: मुझे दोस्त में जो आखिर पूछा था ना
5: जी जी
7: जनरल आप दीन
5: जनेर चलो थैंक यू सो मच था प्रोग्राम में कॉल करी प्यारा भाव ओके जी कॉलिंग नंबर 0333221322 एंड नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
8: वालेकुम
5: सलाम केरसा सगर मौजूद है
8: मिस्टर हादी
5: मिस्टर हादी
8: जी
5: कितना कॉल किया मिस्टर हादी
8: कंबर
5: का कॉल किया प्रोग्राम बुधो पे मिस्टर हादी
8: बिल्कुल
5: अच्छा केड़ो प्रोग्राम नालो बुधाए जो
8: 16 वाइट ब्यूटी शो
5: थोड़ो गलत थी वयो ओके हाँ बिल्कुल सही आ लगाया था प्रोडक्ट न कंबर में मिलन था
8: बिल्कुल मिलन था
5: चलो वरता अथव कोन वरता अथव रुगो डिसी भरी
8: आयो नवता न सिद्रा नवता है नहीं
5: अरे वा वठी अचो आ न ये चो रुगो डिसी हले आयो बस
8: न वठना इंशाल्लाह
5: चलो ठीक आ वठ जो ई टॉपिक ते तवा छ चवंदा
8: असा विंदा इन शादी में टिकटॉक आइन
5: चलो भलो कना दोस्तन के याद कना न चलो थैंक यू सो मच मिस्टर हादी हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया कॉलिंग नंबर 0333212228 नेक्स्ट कॉलर जिसमें के रस्ते से मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
9: बिना परदेस में मुझा दुखिया गुजरन पाया दी है
5: वाह वाह
9: पखी बंद जी पिंजरे में आऊं भी आया थे
5: अला
9: वाकुफ न आया वतन जो है पंहिंजे वतन वञा कीअं
5: वाह
9: वाह ही नाथ तेरो नी तू भी विसारे वेही वेही रही है
5: आईली
9: मयो बाहर पागन मां मजबूर थिया माली आया न किरी ओता कोन ते ओता को त्यो खाली
5: असी
9: त आयो सवाली किरी अमा जी प्यार था अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अहमद नवाज सिंधी कंबर ते रखाया रे सा सबनी सा मुखातिब आया
5: ओके अहमद भाई छाला खुश आयो
9: ए रमजान ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
5: तमा जी शायरी दाडी भली हुई
9: जी माशाल्लाह
5: ओके मुखे
9: सब
5: अलहमदुल्ला ठीक इन प्रोग्राम बुधो पा
9: अलहमदुल्ला प्रोग्राम हले तो सामो
5: केड़ो प्रोग्राम है नालो तो बुधाए जो मुखे वाह वाह वाह वाह वरती है था रुगो बस अच्छा मुखे ता यो बुधायो ता वाइट जी जेका लवली क्रीम आ ना लवली क्रीम बस ता वठी जो वा लगायो गर्मी में वैसे भी मानू चना ता हल्की फुल्की क्रीम लगायो
9: बिल्कुल इंशाल्लाह ताला क्रीम वतना ते पर गाल ये है जेका ता के गर्मी में मानू शादी ते मजबूर ता कन ना पवाने ता काट ने हो ये मानू लगे लगे बा मुखे में वाच ना तो
5: हां मानू मोहब्बत में मजबूर कना है नी है ना
9: पर तो ता हुआ ता असा पाणा वधिक सोणा क्रीम बिन का
5: हां चलो लगाए जो खूबसूरती ना बाबा वधिक खपंदी यार के
9: दोस्त सा बदन ता काफी सारा
5: जी
9: ज़ोएब अली बदे तो बिलाल अली बदे तो जुनैद अली बदे तो
5: हां
9: वधिक गाल ता ये है ते ज़ोएब मुखे सलाम जो ने यो मा
5: आईली हिसाब वठ जोस हिसाब वठ जोस वठ जोस
9: हां यते शादी ते अच्छे कराती
5: तां जी शादी तो कोने
9: रोपली बटन आ के सलाम देख
5: के चलो थैंक यू अलाए के दिसो दोस्त जो कालू लगी वजन बाबा सुठी गाल है तमा सब सोणा आयो पर तमा पानी खूबसूरती जो अन्या वधिक ख्याल रखो ता वाइट एज दा प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो सही आ कंबर में आयो किथे ब्या जुते ब्या ता सब लगायो ता सोणा सोणा थी वजन गत नाज आई तव बाबा सिक सोणो मुजे नजर में आहे रहंदो भी अलाए किथे आहे पर या पक्का दा वाइट एज दा प्रोडक्ट्स लगाइंदो आहे

0: Okay, see, calling number 0332-1322-888. Next caller. Hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam. Abhi shala kusha hai.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kedo bhasa sakit maajuda? Okay, Noorsen, tunyo bha tamahan chi ka lagi vaya hai. Program budo pya? Badin mein halay to? चलो चलो मुख्य यो बुधायो त हा मातली में वाकी कनेक्टेड आए सही सही मुख्य बुधा त तमा क्रीम वर्तिया कोन वर्तिया कने वठना इरादो क्यों तव
1: ना अजी कूल नॉन ना की सरल जसन या
0: वाइट एस जी लवली वाइट एस जी लवली
1: वाइट एस जी
0: लवली चो लवली जलवा लवली दा जलवा जी खैर केड़े दोसन की याद करना बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल कई वाइट एज लवली करी वेठो बाबा लवली दा जलवा था वाने सफा था मतलब याद रख जो नालो सही है अला कराची ये वाला बाबा चवंदा आहिनि वॾनि माण्हुनि जो नंबर बिज़ी हूंदा आहिनि सो हिन लाइ असांजो नंबर बि बिज़ी हूंदो माण्हुनि जो सालनि खां वठी कॉलियूं न लॻनि थियूं सो तव्हां बि थोरो ट्राए कयो लॻी वेंदव सो कॉलिंग नंबर 0332-1322-888 ही वारी कॉल वठूं था ॾिसूं कहिड़े असां सां कॉल मर्जो आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केरु असां सां गॾु आहे कल्ह वारो वधो अला मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधो पिया
1: ॾाढो
0: प्यारो तव्हां जहिड़ो
1: असां
0: कीअं यकीन ॾियारे त असां लॻाईंदा आहियूं वाइट जा प्रोडक्ट पोइ असां यकीन कंदासीं वाकई एॾो प्यारो आहे सच थो ॻाल्हाए लवली दा जलवा अच्छा अदा इहो टॉपिक ते छा चवंदो भला अला इहा ई ॻाल्हि अथव अला बसि हाणे सम्झी विया बिल्कुलु ईअं कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा टिकटॉक नथा हलाइनि हिन करे ख़बर कोन्हे का असांखे चलो मां सर्च कंदमि मूंखे मिले त तव्हांजे लाइ
1: थैंक यू
0: प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भाउ मोहबतूं तव्हांजूं ऐं ही प्रोग्राम जी लास्ट कॉल हुई हाणे कुझु तव्हांजा मैसेज पढ़ी वठूं था ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं बाबा त हिते वाइट एज जा प्रोडक्ट्स आहिनि ऐं तव्हांजे लाइ वाइट एज जा प्रोडक्ट्स आंदा आहिनि अगरि तव्हां नथा लॻायो त तव्हां लॻायो बाबा तव्हां न लॻाईंदा बाक़ी केरु लॻाईंदो सबर कर सबर बोला ही बैठे तो ॾिसो अञा चवंदा तव्हां निगर सां गॾु मोलाई छो हलायो सिधरा इन लाइ हलाईंदी आहियां अच्छा किशोर भाई खे हिते कॾहिं वांदनि जा बि नंबर बिज़ी हूंदा आहिनि इहो त मां सोचो ई न हुयो माना मां वांदी आहियां

0: नगद नगद तदा मनु न मनु अच्छा फिरदोस हमारे साथ मौजूद है फिरदोस मतलब फिरदोस काकन जो भी नालो थी सके तो बुधायो मुखे फिरदोस मां वरी समझा पाई तो माना छोकरी ओके थैंक यू वेरी मच फिरदोस आप हमारे साथ मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है टॉपिक गर्मियों में हाँ बाबा गर्मी में वाकई शादी न कराने घुर्जे यो तमा एहतजाज कयो मानन के जो मिटन माइटन के बाबा गर्मी में शादी न करायो और ये जनाब जयपाल भाई कहते की बात ये मैंने कहा की हमारे घर का थोड़ा उल्टा सिस्टम है बड़े नहीं बल्कि हमें भेज देते है शादी में चले ये भी सही बात
1: तोखे तो यार दिसी खरा खरा बहुन जहार दिसी खरा खरा
0: अच्छा जयपाल भाई कहते कि मेरे घर वाले अच्छा नहीं ये तो मैसेज ना बियो के मैसेज

अच्छा शिकारपुर में ना असो एटीए जो सखर है ना वो सही हलो अव तो अगर तुम शिकारपुर में मुख्य बुध पे तो सखर बुधी सो सही और ये जी चले सही है नी पर नेटवर्क अगर सही नथो मिले तवांगे तो जेको ते तवां गूगल ते मुके आराम से बुधी सको था या वरी तवां फेसबुक ते बुधी सको था। कश्यप कहती यहाँ पे मेरी कॉल नहीं लगती क्या कोई वजीफा पढ़ो मेरी कॉल आगे पास आ जाए भाई दिसो तवां कोशिश कर लगी वेंदव कदे न कदे नेट त लगंदी और बाबा तवां टेंशन न वठो।

ओके जनाब सा प्रोग्राम आहे वाइट एज इन दी स्किन ब्यूटी शो जेको तव्हां डेली ॿुधंदा आहियो डेली मां तव्हां सां गॾु हूंदी आहियां डेली तव्हांजो मथो खाईंदा हिकु बजे खां टे बजे ताईं ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां जनाब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसजो ख़ूबसूरती मिलंदी तव्हांखे उन खां अलावा हज़ार खां जितो बि भाई हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया आदिल हुसैन हमें सुन रहे हैं थैंक यू और अहमद भी हमारे साथ मौजूद है अहमद आपको वेलकम करते हैं मोहम्मद समान खे टॉपिक एडो वडो लिखियो अथव सो बस सही तव्हां बिल्कुलु वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा ऐं जॾहिं गर्मी हुजे वरी तव्हांखे मेकअप करण ते दिलि न चवे न पोइ तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम इस्तेमालु कजो सही आहे सम्झो था और अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम जी सफ़ा अनवर भाई मां खुश आहियां मज़े में आहियां तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो ठीकु आहियो तबियत कीअं अथव हाणे और चाचा खालिद क्या कहते हैं कि हम स्पॉन्सर्ड वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि शो का टाइम चार कलाक कर दे हा एॾो मां कंदमि प्रोग्राम चार कलाक अनवर भाई कहते असां बि कॾहिं न कॾहिं कॉल कंदासीं सबक पको कयूं पहिरियां हा हा चलो ठीकु आहे सबक पको कयो और चाचा खालिद बहुत शुक्रिया आपने इतने सारे कमेंट कर दिए मेहताब अली इंटर भाई हमारे साथ मौजूद है मेहताब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया

ओके सो हाणे टाइम थियो आहे प्रोग्राम में तव्हां खां इजाज़त वठण जो. तव्हां सां गॾु कचहरियूं कंदे वाक़ई टाइम ईअं गुज़री वेंदो आहे, ख़बर ई न पवंदी आहे. सो मोहबतूं तव्हां सभिनी प्यारनि माण्हुनि जो जेके असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, जेके असांखे ॿुधाईंदा त बाबा असां तव्हां सां गॾु आहियूं. ऐं वरी तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो या वरी टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो, तव्हांजो ओ हेॾो सारो थैंक यू. ऐं वरी किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई. सो मोकिलाणी नाहे बाबू सां सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: असल में ना आप लोगों की अकेली घुटनों में आप लोग इसीलिए सोचना शुरू कर दिया, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हैं। 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी मारी हुई है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम्हें।
1: बेरेनिया कोकीन कोइन पिंकी के शाही प्रोटोकॉल इन कराची पुलिस जो बेरिया फुर्ती मंशात फिरोज अनमोल और पिंकी जो रिमांड हासिल करे वरतो। कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन रखने के इदाद में पिंकी के जेल मोकलण वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के चैलेंज कयो। अदालत दरख्वास्त मंजूर कने कोकीन कोइन पिंकी के 3 दिन के रिमांड से पुलिस हवाले कर छोड़ो। डीआईजी दखण चयो आज पिंकी जो रिमांड मिली वो है। पिंकी मथा माजी में दाखिल केस जो तफसील वगैरह करे वरता है। गुजल दिन पुलिस पिंकी के बिना हथ कड़न की अदालत में पेश कयो हो।
2: आई एम पिंकी, और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूं। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से आपसे, यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है? तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे।
1: कोकीन क्वीन अनमोल और पिंकी जो ऑडियो सामू अची वो गिरफ्तारी बाद अगल ऑडियो में पिंकी जो खरीदार के सिलसिलो जारी रखने जो पैगाम दे रही है। पिंकी मंशात खरीदार के राबते लाइ नंबर भी दई छो। ऑडियो ए पिंकी मंशात रतन के गिरफ्तारी बाबत आगाही दी रही है। जैसे मुख्य कुछ थिये तो इन ही नंबर तक मुझो दोस्त अवां सा राबते में इंदो जो इन कम के संभाली दो। इन नंबर तक कम हलंदो रहंदो। गुजल दिन लिखल ऑडियो में जवाबदार पिंकी चई रही तो अवां माण्हुनि जो अकुल गोरन में आहे। 8-9 साल मुझे पुठियां लगा रहो था, रिटायर थी वञो था पर पकड़े नथा सको। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान कुकीन कोइन अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी है। अदालत में पेशी बाबत मामले की जांच लाइ 3 कमेटियां जोड़े छड़ियूं। मजमुई जांच डीआईजी ओला इरफान बलोच कंदो। पिंकी की गिरफ्तारी अदालती पेशी बाबत जांच डीआईजी असद रजा कंदो। जांच पुलिस बाबत जांच एसपी सिटी कंदो।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन में मुबैन हेरा फेरी ए पैंजो नवाजी खिलाफ इम्तिहान पास कंदड़ शागिर्दन सियासी समाजतरीन जो कमीशन के गेट आलो धरणो कमीशन इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी साल 2024 के चटाभेटी इम्तिहान जारी कयल नतीजा रद्द इम्तिहान की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो। चीनी परडेही वजीर जो नायब वजीर आजम इसाक डार से फोन ते राबतो ईरानी अमरीका जंग के खात्मे लाए कोशिशों तेज करने ते जोर भरियो चीनी परडेही वजीर पारा ईरान अमरीका गालियों में सहूलत फराम करने जंग बंदी ला सहूलत फराम करने वाली पाकिस्तानी किरदार की सारा चीनी परडेही वजीर चौधरी पाकिस्तान आबे हरमज बाबत मामला हल करने लाए भी किरदार अदा करे इसाक डार सालसी वाली कोशिशों की हिमायत करने चीन जहा थोरा मनी पाकिस्तान अमन वाली कोशिशों जारी रखो

0: मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब ऐवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वगे खां राति 8 वगे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
0: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
0: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस ऐवान मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हाँ 2315-2525-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे में
8: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पित्ते, मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
7: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे का रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियों जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
8: आई गायनेकोलॉजिस्ट है औरतों जी बीमारियों जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब,
7: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मैजन 2 बजे का शाम 4 बजे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमन दिमागी बीमारियों जो माहिर मंझन 12 बजे का 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा,
8: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे दी मंझन 2 बजे का 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
7: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली। खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाउ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: लोगों की हैवी मारी हुई है. अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं. मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा. तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम्हें.
4: पहिरें ॾींहुं कुकीन क्वीन पिंकीअ खे शाही प्रोटोकॉल ईंदड़ कराची पुलिस जो ॿिए ॾींहुं फुटियो. मंशा तरोश अनमोल और पिंकी जो रिमांड हासिल करे वरितो. कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ॾखण जी अदालत में पिंकी खे जेल मोकिलण वारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जे फैसले खे चैलेंज कयो. अदालत दरख़्वास्त मंज़ूर कंदे कुकीन क्वीन पिंकीअ खे टिनि ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो. पुलिस अनमोल और पिंकीअ खे जेल मां जांच लाइ हिरासत में बि वठी छॾियो. डीआईजी ॾखण चयो त पिंकीअ जो रिमांड मिली वियो आहे. पिंकीअ मथां माज़ी में दाख़िल केसनि जा तफ़सील बि गॾु करे वरिता आहिनि.

0: हाई फ्रेंड्स, आई एम पिंकी और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूं। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। ठीक है, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे।
1: हुकीन कोई अनमोल उर्फ पिंकी जो गिरफ्तारी बाद जान नशीन मुकर्रर करने वाली ऑडियो बस सामू अच्छी पाया हो। गिरफ्तारी बाद कल ऑडियो में पिंकी जो खरीदारन के सिलसिलो जारी रहन जो पैगाम पिंकी मनचाद खरीदारन के रबते लाइ नंबर बढ़ाई छो। ऑडियो में पिंकी मनचाद वटन के गिरफ्तारी बाबत आगाही दी रही है। जडे मुख्य कुछ थिये तो इन ही नंबर तक मुझे दुरुस्त दोस्त तवा सा रबते में इंदो जडे इन कम के संभाली उन ही नंबर तक कम हलो रो। गुजरल लीक थियल ऑडियो में जवाबदार पिंकी चेरी हुई अवाम मानून जो अकुल गोडन में है। 8-9 साल मुझे पुठिया लगा रहो था, रिटायर थी वो था पर पकड़े ना था सको।

0: सेनेट जो गरु मामलनि बाबति कामेडी कोकेन क्वीन पिंकी वारे केस जो नोटिस वरितो। डीआईजी एन एफ ईंदड़ इजलास में तलब। कामेडी चेयरमैन फैसल सलीम चयो त पिंकी कंहिंखे मंशात फराहम कंदी हुई, समूरा तफ़सील बि पेश कया वञनि। सेनेटर समीना ज़हरी चयो त मंशात विकिरो कंदड़ औरत जी अदालत वञण वारो अंदाज़ छिरकाईंदड़ हो। मंशात विकिरो कंदड़ सरियाम घुमी रहिया आहिनि ऐं असां हिते मरण लाइ वेठा आहियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं

0: दकेश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
0: जी हा 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: सिंध के माथे का झूमर
0: DFM 88 Network.
3: सिंध की आवाज.
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
7: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
8: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे.
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920.
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं में
8: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा.
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा.
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
7: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125257 86
1: जी हाँ 2315-2575-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: Hi, hi, hi.

बीजिंग ऐं अमेरिका जंगबंदीअ जे हवाले सां ॻाल्हियूं थींदियूं।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
7: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
6: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
7: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: सिंध के माथे का झूमर
0: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अम्मा, एडी सुमो के छा मिलियो
4: पुत्र।

0: हिकु ॾींहुं हिन छोकिरे जूं जासूसी माराईंदियूं असांखे
1: पता लॻाता हूं
2: असांजो पाणी साफ़ न आहे तंहिंजे करे त असां बीमार था अचूं असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे
0: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
2: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो
3: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तनि खां बचाओ ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो
4: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
3: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: कापियूं चेक कराइण जी सदा।
1: गुजरियल 15 सालन में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इदारो सिंध दुश्मन इदारो बनजी वियो आहे।
2: केॾो बि धमकायो, तव्हां केतिरो बि ईसायो, पर पोइ बि तव्हां ॾिसो त अॼु हज़ारे नौजवान लोननि ते वेठल आहिनि। असां तव्हां खां न ठल ॾिना हुआसीं, न अॼु ॾिना आहियूं।
3: पंहिंजा माण्हू हिते हाणे रखनि था, जेको हिननि खे कमाए ॾियनि था, हिननि जा कमाऊं खपनि। असीं विढ़ंदासीं ऐं पंहिंजे आख़िरी साह ताईं असीं सिंध जे मुस्तक़बिल लाइ
1: हाणे हिकु सिंध जे माण्हू खे ख़बर आहे तव्हां 7-8 करोड़ रुपया ॾींदव तॾहिं तव्हां कमीशन पास कंदव।
4: असां पंहिंजे

ख़तरनाक शान खां महफ़ूज़ रखंदी आहे तव्हांजी जिल्द खे। जी हा दोस्तो, कीअं भला ईअं भला कीअं माना ओ पुछो तव्हां कीअं माना इहो ईअं माना त तव्हां जॾहिं ॿाहिरि निकिरंदा आहियो घर खां ॿाहिरि या कम सां गॾु या तव्हांजे घर में उस वग़ैरह ईंदी आहे, उहो तव्हांजी स्किन खे जॾहिं लॻंदी आहे न त स्किन खे उहा डेमेज करे सघे थी, बल्कि कंदी आहे। त SPF 30 जेको हिन में शामिल आहे, इहो तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न ख़तरनाक सिज जे मुज़िर उन्हनि किरणनि खां महफ़ूज़ रखंदो आहे। ऐं ॿियो ही चवनि था त बाबा हिन में कॉजिक एसिड शामिल कयो वियो आहे, जेको बाबा दाग धब्बा तव्हांजे चेहरे तां ग़ाइब कंदो आहे, ईअं ग़ाइब कंदो आहे ॼण को जादू आहे। ऐं हिननि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त बाबा हिन में हेमे ब्यूटी क्रीम में ग्लूटाथायोन, आरबुटीन ऐं वाइटामिन सी शामिल आहे। वाह साईं वाह, इलाही शयूं शामिल करे छॾियूं अथनि जेके हिन महांगे दौर में मां नथो सम्झा त ॿियो कोई शामिल कंदो हूंदो। बहरहाल ही चवंदा जेके ग्लूटाथायोन, आरबुटीन ऐं वाइटामिन सी आहे न, इहो तव्हांजी स्किन खे जेको आहे चमकाए पियो ऐं कुदरती निखार ऐं रोशन रखे पियो। हाणे कुदरती निखार हर को चाहींदो आहे न, यार आर्टिफिशियल न लॻूं, ईअं न लॻे त यार क्रीमूं थपींदो आहे या क्रीमूं थपींदी आहे। स्पेशली असांजी अधियुनि जे लाइ, अधियुनि जे लाइ इहा वधीक फ्रूटफुल प्रोडक्ट साबित थी सघे थी, छाकाणि त हेमे ब्यूटी क्रीम जेका आहे न इहा इन्हनि इस्तेमाल करण लाइ उन्हनि जे लाइ शामिल लॉन्च कई आहे, जेके अदियूं काफ़ी सारा जतन कंदियूं आहिनि, फार्मूलाज वग़ैरह ठाहींदियूं आहिनि घर में, या वरी पार्लर ते वञी करे फेशियल कराईंदियूं आहिनि, जेके टेम्पररी हूंदा आहिनि पर परमानेंट न हूंदा आहिनि। पर इन्हनि दावा कई आहे त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल सां तव्हांखे परमानेंट रिज़ल्ट मिली सघे थो ऐं तव्हांजो चेहरो जेको आहे न बिल्कुलु ईअं निखिरजी सघे थो। जी हा दोस्तो, त तव्हां हिन जो मुंहिंजो मशवरो आहे तव्हांखे त तव्हां हिन जी इहा प्रोडक्ट आज़माए सघो था, या अव्हांजे शहर जे हर नंढे वॾे स्टोर ते मौजूद आहे हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। तरीक़ा इस्तेमाल बिल्कुलु आसान आहे, तव्हांखे सभ खां पहिरियां त इंश्योर करणो आहे त तव्हां पंहिंजे शहर जे क़रीबी मेडिकल स्टोर ऐं गॾो गॾु सुपर स्टोर या वॾी दुकान तां हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम नालो वठी ख़रीद करे आया हो। पोइ राति जो सुम्हण खां पहिरियां चेहरे खे तव्हां वॉश कंदव, धोइण खां बाद में चेहरे ते हेमे ब्यूटी क्रीम लॻाईंदव। हल्की हल्की तव्हांखे थपड़ियां जिते दाग धब्बा मोड़ा हुजनि न, उते तव्हांखे थोरी वधीक मक़दार में लॻाइणी आहे। सुम्ही रहणो आहे, सुबुह जो उथंदव, उथण महिल जॾहिं अॻियां पंहिंजो चेहरो धोईंदव, आईने में जॾहिं ॾिसंदव न, तव्हां चवंदव वह बाबर वह वाह जो पैगाम ॿुधायो अथई हेमे वारनि जो। त इहो मूंखे वाह वाह न कजो, हेमे वारनि खे वाह वाह कजो, ठीकु आहे। ऐं हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे शहर में नथी मिले त बाबा हिननि जा हेल्पलाइन नंबर्स अथव, नोट कयो सभई, खणो पनो, खणो मोबाइल ऐं टाइप कयो, मां ॿुधाईंदो थो वञाव। 0-3-13-32-26-5 ऐं ॿियो नंबर आहे 0-3-16-23-33-589, ठीक आ। मां वंस अगेन नंबर रिपीट कयां पियो, 0-3-13-36-222-65 ऐं 0-3-16-233-559। इन नंबर से तव्हां कॉल कयो, हिकिड़ो नथो खणे त ॿिए ते कॉल कयो, उन्हनि खे पुछो त बाबा हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम किथे मिलंदी, तव्हां वठी अचो, फ़ाइदा वठो। ऐं तव्हां त बसि कसम खणी वेठा आहियो, सेल्फी मोकिलणी कोन्हे, नथो चवां अञा ताईं सेल्फीज़ तव्हां जूं हाणे स्टॉप लॻी वियो आहे। शुरू में ॿ टे सेल्फीज़ आहियूं, हाणे वरी नथियूं अचनि, त तव्हांखे सेल्फीज़ लाइ बाबा रिमाइंड कराईंदो, सेल्फी मोकिलण में शर्म न कयो। तव्हांखे अगरि पंहिंजो चेहरो नथो न आहे ॾेखारणो, भोलड़ो हणी छॾियो चेहरे ते, स्मेली हूंदो आहे उहा हणी छॾियो, पर सेल्फी मोकिलियो। तव्हांजी वधीक सेल्फीज़ हूंदियूं, उहे इन्हनि ॾे फॉरवर्ड कबियूं ऐं ही वरी इन्हनि खां वरी मां इनाम जो सिलसिलो शुरू कराईंदुसि, ठीकु आहे। तव्हांजी सेल्फीज़ ईअं सम्झो ॼण जेको आहे प्रोग्राम खे हथी वठण लाइ तमामु घणियूं फ़ाइदे वारियूं साबित थी सघनि थियूं, ठीकु आहे। त सेल्फी सेंड करण लाइ असांजो नंबर आहे 0-3-000-11-34-88। अच्छा जी, प्रोग्राम में मां सेगमेंट तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां, ॻाइण वॼाइण आहे, तव्हांखे पंहिंजे सुरीली आवाज़ में गाना ॻाइणा आहिनि, जेके हेमे ब्यूटी क्रीम ते हूंदा त वाह वाह थी वेंदी। अगरि तव्हां ॿिया गाना पंहिंजे आवाज़ में ॻाईंदव त मां चवंदुमि यार पोइ ॿिया गाना उन्हनि सिंगर्स जे आवाज़ में छो न वधूं, ठीक आहे। त उमीद आहे तव्हां ॻाल्हि खे सम्झंदव ऐं सेगमेंट खे बाक़ायदा तौर ते रौनक बख़्शींदव। प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो गानो थो हलायां यार, ही ॾाढो प्यारो गानो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे, थोरो न्यू वर्जन में अथव ऐं तव्हां ॿुधंदव न मज़ो बि ईंदव। ऐं अगरि तव्हां सेट थी वञो न हिन गाने खे ॿुधी करे, पोइ विच में हिकिड़ो अचे थो जेको तव्हांखे बाक़ायदा तौर ते हौसलो पियो ॾे हिन गाने में, ॿुधो, इंजॉय कयो, मूंसां गॾु रहो पूरे 8 वॻे ताईं।

लतें शार तू ही हुए वह कंगाल करे जाली गाली करे मुखे वह बताल करे अखियों आलू की पान के संभालो मेरे यार हाने बैठा रुगो वक्त के गुजारे प्यार कंदे कंदे तू मुसा जफा छो कई जे को कर नहीं तू ने तो के अंदाज हो गई वो भी किया तो रखे रब ते आसरो तू न समझो मुखे न तो सबो वास्तो तुझे

हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जी नुकसानकार किरणन खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

0: जी दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त गानों अहां एंजॉय कर हिन है में ब्यूटी शो में सफा ये मजो अच्छी यार मुख्य तो मजो अच्छी तक भी मजो आया हों हाँ वधिक मजो कंदासी पान तवा जे सुरीली आवाज में जी गाना गायल हूं ठीक अज दिसूं था बाबा केर तो खटी खेर केर तो असा सुरीला गाना बुधाए मजो तो कराए दिसूं था पेरियो मैसेज असा मोकलो आए हि छा पो चवे अचो बुधूं भाई यार कोशिश कंजो गाना गाय जो ठीक बाकी जो गानों प्ले कर ही हूं फलान वरी सेगमेंट अलग हों वरी मैसेज जरिए अच्छा ही वॉइस नोट बुधो
1: असा तो गीत गायू हमेशा हेमें डायमंड ग्लो बेटी क्रीम जा असा तो गीत गायू हमेशा हेमें डायमंड ग्लो बेटी क्रीम जा आशिक सब सुहारा हेमें डायमंड ग्लो बेटी क्रीम जा अस्सलाम वालेकुम मैं आया नजीर खुसफ राम बलोचिस्तान मां प्रोग्राम तमाम बेहतरीन हली रहा है असा बदरे आयो तमाम बेहतरीन प्रोग्राम आया नजीर खुसो
0: हेलो नजीर खोजो साहब तांज मेहरबानी ता कोशिश यो गाइंदा कयो ठीक आ डाडो ता शायरी करे ये शायरी जंदास में असा के बुधाइंदा हो हेमे ब्यूटी क्रीम ते पर गाइंदा हो ना अन्या मजो अची विंदो एकडो ही वॉइस नोट बुदो
2: बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम मां गोठ माड़ी मां तो गलाया मोहम्मद उमर बाबा छाला सई खुश लगा पया हो सई हाने गानो नचौंदा से असा सुर एडो भलो ना है सई
0: चलो सई का गाल कोनी असा ला ता गाए बुधायो हुकुम आ भा जो एकडो हेवा है सडो दो
3: अस्सलाम वालेकुम बाबर बा चाला को शायो खैर सुभान मुस्तफा शठरी मिटवा का अर्ज पुकया अदा ता जो प्रोग्राम आडो जबरदस्त तो हले पर यार या हेमे नेचुरल ब्यूटी क्रीम तठरी मिलवा में कौन थी मिले मां बरिया टडाडी पछा कई आई
0: साईं हेल्प टाइम नंबर वारन के कॉल कयो इनन का पूछो ही तांगे बुधाई देवे किथे मिलंदी ठीक आ सो नंबर से थवे 03133622265 आई बियो नंबर आ है 03671354 07 ठीक है सो इन बिन्हीं नंबर से तुम कॉल करे है मैं नेचुरल डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम के हवाले से पूछी सकूं था तो बाबा ठरी मीरवा में केड़े वेझे स्टोर से मौजूद आ जो असा वठी अचो ही तांगे बुधाइंदा ठीक है इन जी ड्यूटी लगल आ सो नाइस जो आपका हिजाब फ्रॉम सकर हाय हिजाब कैसी हो प्यारी बहना प्रोग्राम में आप शामिल हुई एकड़ो ही वॉइस नोट बाबा
4: प्यारो बाबर साहब जेको क्रीम जो है में बीटी क्रीम जो प्रोग्राम खणी आयो आ में बीटी क्रीम लगायो चेहरो पंजो साफ कयो आए बाबर साहब असा साथ जो सेल्फी मोकलियो बाबर साहब मां भी तुझे सेल्फी मोकल दुम तोखे मौला खुश रखंदो आबाद हूंदे बिलावल जतोई बुधे पे प्रोग्राम ता जो पने आगिल खां कुर्बान खास के लिया अजीज सोलंगिया जबार चना बुधन पीर वसण अब्दुल जबार चना के खड़े में घना सलाम बाबर साहब पे बुधन पा सभी के असलाम वालेकुम या अली मदद बाबर साहब मजाक क्या है
0: वालेकुम असलाम या हिते तदे थी जडे ताजी सेल्फी इंदी ठीक बाकी या हिते तीन जी क्या खाली खाली पे लगे ताजी मेहरबानी ठीक फिदो सिरो गानो गाय ठीक ताजो नालो असा लिखी छो गान वाली लिस्ट में ॾिसूं था केर थो खटे वोटिंग कंहिंखे पई मिले अच्छा हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे पोइ अव्हां जूं लाइव कॉल्स अथव बाबा ठीकु आहे ॿुधो
5: उहे में ब्यूटी क्रीम वाजो लॻो अथई हे में ब्यूटी क्रीम वाजो लॻो अथई चेहरो ख़ूबसूरत

0: नरम चमक आई साफ जिल्द रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जी नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जिल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आरबुटिन जेके दिन तव्हां जे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर दिन हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी दोस्तों जबरदस्त गानो हां एंजॉय कयो यार गानो त बस हाने जे की वणियो उही चोंदा हां जबरदस्त बाकी त जण जको आ त ताजा गाना मुगे वणंदा जे की ता गाय करे मोकलिंदो अच्छा 8881 वारा कुछ मैसेजेस मा शामिल करे वठा ई न कावड़ जीवन न मुते अदा सही यार इलाही मोकला थो मैसेज यार 8881 वारा माके त खुशी चढ़ी वे सब शामिल कंदे कंदे पीर आरडो से अली मोहम्मद महर सलाम भाई जान कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं आए तवां फरमाइश कई यार थोड़ो रुको तो सही ओके सागर शाह जी गाने जी गोठ नंगर इंडड़ खां अहमद दीन इंडड़ उर्स इंडड़ गुलशेर इंडड़ खुर्शीद इंडड़ मेहरबानी भा प्रोग्राम भी भलो क्रीम भी वीआईपी क्रीम आई कड़ी हो तो बुधा तवां के यो रिक्वेस्ट सॉन्ग ममताज मौलाई एड़े सोहनी गाल कर को दिलड़ी ठड़ी पवे दिलड़ी ठारी दई हाणे असन लिसनर्स एड़ा गाना बुधराई दई फ्रॉम सिटी मोहब्बत धड़ो का मेहरबानी भा असन बदवा मैसेज मोकलो आए ओके भा कबूला मुखे बदफाई कबूला ता जो मैसेज ज्वेलरी खा खालिक लाशारी शो वीआईपी आए गुलाम रसूल मरी साहब भी बुधन पिया ता जी मेहरबानी गोठ नबीदाद भमरो खां नारो खां इमाम निनो भमरो साहब भलीकार रसूलाबाद से आबिद हुसैन शंबाणी बाबर भाई हमदर्द अगते तुम मैसेज मिसिंग पार्ट आयो है गुलशेर बाबर एंड मुजम्मिल बाबर विलेज अच्छा बबर हों ठीक है सॉरी अबा गुलशेर बबर ए मुजम्मिल बबर विलेज अलावरा बबर खां तुम भा वकार अहमद राजपर फ्रॉम बसीरो सॉन्ग रहीम शाह आई विल ट्राई मैं हागी खान लोहर बलोच हाजी खान सॉरी ओके हाजी खान लोहर बलोच विलेज प्यारो खान लोहर बलोच लाड़का नसी भाबर भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है हमें अहमद मुगल का सॉन्ग सुना दो अदा आपका प्रोग्राम है मैं ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छा चल रहा है अदा ओके अदा आलम शेर मीरपुर खास गुट अतना मोरी खां वेलकम भा याम खां गुट पठान खां जखरानी नवाजो जागीर जकवा बा साईं बख्श जखरानी साहब तांजी मेहरबानी यार हाने हलावा तो गाने जी तरफ ही गाना तां गाए करे बुधाइंदो सेगमेंट तव गायण वजायण कीए गायणो आए जिए जवार मोहम्मद बचल शंबाणी साहब गायो आए बुधो ही
2: अस्सलाम वालेकुम या अली सलाम अदर सरकार ने खुश आए तो वे सही है मां जवार मोहम्मद बचल शंबाणी में गला नारो 184 हजर तांजो प्रोग्राम माशाल्लाह तमाम बेहतरीन तमाम सुठो पेड़ बुधो जाए क्यों अदर अज मुझे दोस्त जो सखर पर सखर में बटन जैसे पुछा कि पर इम्यूनिटी क्रीम को मिलस उनके तकड़ हो इनशाला नेक्स्ट टाइम जरूर अस खरीद कदा सर दिल थी चे गान बुदा ब्यूटी क्रीम लगा चेहरे के चमका सरकार ने खुश आयो तो भी सही है मां जवार मोहम्मद बचल शंपाण में गला नारो 184 हजर तांजो प्रोग्राम माशाल्लाह तमाम बेहतरीन तमाम सुठो पेड़ बुधो जाए क्यों अदर अज मुझे दोस्त जो सखर पर सखर में बटन जैसे पुछा कि पर इम्यूनिटी क्रीम को मिलस उनके तकड़ हो इनशाला नेक्स्ट टाइम जरूर अस खरीद कदा सर दिल थी चे गानो बुधा

0: हिकड़ो ही वॉइस नोट बुधो कयूं मंगी भा तांजी मेहरबानी यार थैंक यू मां तांजी लिस्ट में नालो चाड़ियो आए दिसूं पे हाने वोट के के केतरा पे आचन ही बुधो
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद बाबर भाई शाह अल्लाह खुश अल्लाह खुश करनो बाबर भा बाबर भा मैं न थी मां तांजो नंबर लाइव कॉल ध्यान दो

0: नाम फिरोज आहे।
1: यार वाह वाह, यार वाह वाह वाह जो माशाल्लाह सुरीलो आवाज़ है तव्हांजो, ॾाढो सुठो गानो ॻायो यार अब्दुल कयूम मंगी। अॼु त सफ़ा ईअं दिलरी ठरी थी पए वाकई हिन जे गाने जी हमरा फरमाइश कई आहे। हिकिड़ो ही वॉइस नोट ॿुधो, कयूम मंगी भाउ तव्हांजी महिरबानी यार, थैंक यू। मां तव्हांजो लिस्ट में नालो चाढ़ियो आहे, ॾिसूं पिया हाणे वोट कंहिंखे केतिरा पिया अचनि। ही ॿुधो,
2: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद बाबर भाई, छा अलाह खुश, अलाह खुश कंदो बाबर भा। बाबर भा महीनो थी वियो आहे मां तव्हांजो नंबर लाइव कॉल ते हणंदो, ऐं अॼु हैवी ड्यूटी क्रीम ते कलाम ठाहियो आहे, उमीद तव्हांखे पसंदि ईंदो। ऐं उते क्रीम लॻाइणो आहे पंहिंजे चहिरे खे ख़ूबसूरत बणाइणो आहे, हिन ड्यूटी क्रीम लॻाइणो आहे पंहिंजे चहिरे खे ख़ूबसूरत बणाइणो आहे, हिन ब्यूटी क्रीम जो रिज़ल्ट प्यारो चहिरे खे करे सुहिणो सांवरो, हिन ब्यूटी क्रीम जो रिज़ल्ट प्यारो चहिरे खे करे सुहिणो सांवरो, असांखे हिन जो फ़ाइदो वठणो आहे, हिन ब्यूटी क्रीम लॻाइणो आहे, हिन ब्यूटी क्रीम लॻाइणो आहे चहिरे खे पंहिंजे सुहिणो बणाइणो आहे। वास परी बुकटी लालकाणी खां बाबा।
1: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, बुकटी साहब मज़ो थी वियो यार, ॾाढो सुठो गानो ॻायव, ॾाढी ख़ुशी थी, थैंक यू अदा। हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे ॿुधो।
3: अस्सलाम वालेकुम बाबा शेख, कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो, सभु ख़ैर। मां तव्हांजो पंहिंजो फाजार मोसोलनि जी शहर नवाब आहे, उमेद ख़ुशि हूंदा हुओ, माशाला प्रोग्राम ज़बरदस्त थी रहियो आहे। तव्हांखे गानो था ॿुधायो शमन अली मीराली जो, तुंहिंजे प्यार सिर झुकाए छॾो न त झुकण जहिड़ो मां कोन हुउमि।
1: वाह साईं वाह, छो न इहो शमन मीराली जी आवाज़ में ॿुधजे, तव्हांजी वॾी महिरबानी लख थोरा शामिल थियण जे लाइ। ऐं अदी जेको आहे हिजाब फ्रॉम सखर सनम मारवी जी फरमाइश कई आहे, आई विल ट्राई सनम सनम मारवी, प्ले कंदुसि मां हिजाब, एंड आप जो है अपनी आवाज़ में गाना सुनाना चाहती है पर नहीं सुना सकती, पता नहीं क्यों, चले कोई बात नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। सो जी हिकिड़ो ही वॉइस नोट अथव, ही शामिल करे अवांजी लाइव कॉल्स।

खान गुलाम सुल मरी ममताज मंगलाणी भुट्टे मंगलाणी तुम प्रोग्राम बुधी रहे अलग जने जुड़े।

0: ठीक है, मां कोशिश कंदुसि, ठीक है
1: जी, ठीक है असां मुश्किल थी फोन लॻे त अची वरी तव्हां कीअं न था कयो।
0: हलो हलो मां कोशिश कंदुसि हाणे कॉलर्स खे वधीक टाइम ॾियां। थैंक यू, प्रोग्राम में शामिल थियूं, अलाह हाफिज। अच्छा ही तव्हांजी तजवीज़ू जेके आहिनि मुंहिंजा प्यारा लिसनर्स, उहे तव्हां ॾींदा आहियो, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। हुते ग़ौर कंदासीं पाण पर विच प्रोग्राम में। हलो ठीकु आहे, आई विल ट्राए, आई विल ट्राए बट नॉट कंफर्म। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: केरु था ॻाल्हायो भाउ?
2: जी अली रज़ा खोसो पियो ॻाल्हायां भाउ।
0: किथां?
2: जी शहर मानजंद लॻोट पालवान खोसे।
0: वाह साईं वाह, गानो ॿुधाईंदव?
2: जी जी हा
0: ॿुधायो।
2: हे मैं ब्यूटी क्रीम लॻायो लॻायो

0: उठाए छो मोहिमी भी टिकरी मां मुझो चेहरो चंड बनायो हिमी बीटी क्रीमा बाबर बाद जे करे कोशिश कजो त आमद मुगल जी आवाज में कला बुधे न रात जे अंधियारे में सनम चैन गवाए वेठो हा।
1: चलो अदा तांजी वरी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थे लख थोरा तो दोस्तों प्रोग्राम ताबो हनीफ रिंदे लाल दिनो मोहम्मद यूसुफ जवान मोहम्मद बचल शंबाणी अब्दुल कयूम मंगी वासिफ अली बुक्टी इम्तियाज बंगलानी गुलाम अली शाह अदी मरी साहब इन सभी के वींदे वींदे ये जबरदस्त गानों जो आते डेडिकेट करी पे वाया। अच्छा जी ही गानो प्ले क्या अदियो की राहत रही पो या वरी सनम मारवी एक कॉलर का पुछी करे अवां का मोकलियां पे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: साईं गुलाम अली शेख साहब।
2: जी साईं जी
1: साईं वक्त तमाम मुख्तसर आ फैसलो यो तांगे करनो आ ते सनम मारन जो पैगाम इसो जिन गाना गाया इन इन जो मकसद यो ते जो ने हेमे वारे जे पैगाम के गाने सूरत में तवा ती पहुंचाया हुआ यानी पैगाम आवा ती पहुंचाण जो इयो कतअन मकसद बनाए तमा ताके जबरदस्ती चवा ते एने जी करीम वठो वठणी तो बस वठी नो न ताके जरूरत आए ता ते एने जो पैगाम आ पहुंचाए पे ता समझो पे ता जे लाए कम जी जरूरत वाली शे थी सगी थी तो तवा हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जरूर इस्तेमाल करे दिसो या बी प्रोडक्ट्स का बिल्कुल डिफरेंट इन जे करी आए छाकाण ते इन में कॉचिक एसिड शामिल आए एसपीएफ 30 ग्लूटाथायोन विटामिन सी एंड बिकेत्री जड़ी बूटी शामिल आए तवा के तमाम सुठो फायदो दे सकन जो दिन इस्तेमाल कई आए उन्हें जो यही फीडबैक आए तो भावर भाव वाकई हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जड़ी बुधी सी नड़ी निकती है ढी खुशी पी थे सेल्फीज न पी अचन खैर आ को मसलो को उम्मीद है तुम सेल्फीज मोकलने में का भी कंजूसी न कौ तवी सेल्फीज जन हेमे ब्यूटी क्रीम से इन हेमे वन मोकलिंदुमान चवंदुमान बवा इनाम वगैरह दियो अस लिसनर्स के सो जिन जी शहर में नी मिले तो हेल्पलाइन नंबर अव 03 13 36 22 26 5 0336-7135-407 तो बाबा ही गाना उन्हें जे ना जिन मुखे गाना गाए करे बुधाया अरु जे सेगमेंट गायन वजायन में तो अगले प्रोग्राम ताई पांचे मेजबान बाबर शेख के दियो इजाजत अल्लाह हाफिज़ है जिंदगी बखैर।

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम हाण नरम
1: सचल की सर मस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर

0: पहिरें ॾींहुं कोकेन क्वीन पिंकीअ खे शाही प्रोटोकॉल ॾींदड़ कराची पुलिस जूं ॿिए ॾींहं फुर्तियूं मंशियात फरोश अनमोल पिंकीअ जो रिमांड हासिल करे वरितो। कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ॾखिण जी अदालत में पिंकीअ खे जेल मोकिलण वारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जे फैसले खे चैलेंज कयो। अदालत दरख़्वास्त मंज़ूर कंदे कोकेन क्वीन पिंकीअ खे टिन ॾींहनि जी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। पुलिस अनमोल पिंकीअ खे जेल मां जांच लाइ हिरासत में बि वठी छॾियो। डीआईजी ॾखिण चयो आहे त पिंकीअ जो रिमांड मिली वियो आहे। पिंकीअ मथां माज़ीअ में दाख़िल केसनि जा तफ़सील बि गॾु करे वरिता आहिनि।
1: और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है
0: कि पिंकीअ जो रिमांड मिली वियो आहे। पिंकीअ मथां माज़ीअ में दाख़िल केसनि जा तफ़सील बि गॾु करे वरिता
1: आहिनि। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूं। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि
2: कम के संभाली दो इन ही नंबर था कम हलंदो रहंदो गुजर दिए लीक कर ऑडियो में जवाबदार पिंकी चई रही हुई था अवां माण्हुनि जो अकुल गोॾनि में आहे। 8-9 साल मुंहिंजे पुठियां लॻा रहो था रिटायर्ड थी वञो था पर पकड़े नथा सघो।